तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, या कश्चित्

वाहेगुरु जी बोलो, वाहेगुरु जी बोलो। सत्य नाम जी बोलो, सत्य नाम बोलो, सत्य नाम जी बोलो। नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो, नित्य नित्य जपिए।

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण नित्य नित्य जपिए कृष्ण नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो बोलो हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो सत्य नाम सत्य